ना जाने को ये कैसे है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी खुद देने के नीति में जीवित ऐत कथा वगैन खुद देने के नीति अपने संपूर्ण कथा वगैन बीटे का हम वैना बीटे का वैन वैना बीटे का अंडर ने बीटे का हिना वैना मुकुट मनो के अनेक शब्द वैना खुद दान

आदरणीय धरंगा काटवत्म नोकियो बहुदे मेवन विटमा ओबट पवसायत प्रेमे लंगमम कवियक वीमी एतरम हंगुम बरहितक रिद्धवु पापेट खाव वग उत्तर करु करन्नट दै मट वटहेन्ने नत हिते गेंबरु तनक दरा गन्नट बरि पसुतवीमक वे दुखक वे ये तरंग आदरे कल पिरिमेक ए अतीतवत मे वर्तमानवत आयत मट हम बुन्ने एत्तमाई लंकी समार वैरतीम अपिट लोकु पाड़मा कियला देना